0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन हैं और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को, समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद गगन, आपका बहुत बहुत नमस्कार।
1: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो सफर की शुरुआत रही, कैसे रही? अमूमन होता क्या है कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज।
3: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
1: जी,
3: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उन सब चीज़ों में जब मैं देखता था तो मेरा कभी मन करता था कि मैं भी पत्रकार बनूं और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक उपलब्धि हासिल हो। उस समय मुझे लेखन का शौक था, तो मैं गज़ल, कविता, कुछ कहानियां, इस तरीके की उस समय की चीज़ें थी तो मैं लिखा करता था और बड़ी सराही जाती थी। कई बार कई समाचार पत्रों ने उसको
1: प्रकाशित भी किया।
3: एक पत्रकार थी बहुत पहले, उसका नाम था पांचजन्य, और जो अभी भी है।
1: जी है, जी है।
3: पांचजन्य में भी मैंने काफी लिखा, बड़ी अच्छी उसकी कमेंट्स आते थे। उसके बाद कई ऐसी पत्रिकाएं रही, एक सरिता चला करती थी
1: पत्रिका, जी जी जी,
3: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
1: तो ये कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
3: बिल्कुल।
1: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
3: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहां लोग अपने जीवन यापन के लिए हम बहुत सारी चीजों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
1: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं।
3: जी,
1: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से या किसी पाठकगण से या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है, क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर
3: जी।
1: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
3: बिल्कुल सही बात है गगन, ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
1: वास्तव
3: वो एक पूजा है।
1: बहुत सही कहा।
3: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
1: नारद जी के बारे
3: में, वो नारद जी के बारे में कहा गया।
1: जी जी जी,
3: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: और नारद जी को अगर कहें कि उनका मोह भंग हो गया,
1: हाँ।
3: तो जहाँ भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारिता की प्रेरणा देते रहे या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखें, तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
1: क्या बात,
3: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है, और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
1: बहुत कम,
3: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
1: अरे वाह, आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा, और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी, आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात निकलकर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
2: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती। स्तंभ स्तंभ है और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
1: जी जी,
2: मैं अगर
1: जी
2: मैं हूं तो
1: नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझे, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है, तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
2: कोई बात जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
1: जी,
2: वो यही है कि बदल चुकी है। बदला कुछ नहीं है, पहले भी पत्रकारिता ऐसी ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो स्वच्छ अपने और दूसरों के विचार है
1: जी,
2: उन विचारों को रेखांकित करके
1: जी
2: या शाब्दिक करके उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
1: जी,
2: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
1: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है,

0: समाचार चैनल्स में, जो समाचार दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स हो, दूरदर्शन में जो कुछ दिखाया जाएगा वो मर्यादित होगा, क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी कोई खेती तो होती नहीं।
1: जी जी,
0: वही उनकी कमाई है, ये वही उनका साधन है, जो फाइनेंशियल जो भी वहां से ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अपने भी माध्यम है।
1: जी जी,
0: लेकिन सच मायने में अगर पत्रकारिता को कहेंगे तो ये पत्रकारिता नहीं कह सकते।
1: क्या बात है, यही सर मैं चीजों को जानना या समझना चाह रहा था। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, या यूं कहूं कि जो एक साधारण व्यक्ति श्रोता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ उन विद्यार्थियों को भी रखना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कुछ करियर की बातें हैं वो मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, वाकई ये जो वार्तालाप हो रहा है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के सीईओ हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है, और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व तो उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो, और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का जी,
1: गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें, और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान होगी, और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर, कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपनी मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और सभी अपने मास्कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी, कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिस को भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
2: बहुत गुण, बहुत गुण।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूँगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक छोटा सा वादा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं। ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा, और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कहीं पर भी सुन पाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM.
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM सुनो शारदा.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Neil DeMello, do you take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
3: I do.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ जब आप ऑन रोड चल रहे हैं तो ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि अपनी लेन को फॉलो नहीं करते और उसके बाद जबरदस्ती ओवरटेक कर रहे होते हैं और सामने वाले जो व्हीकल आ रहा है उसको रास्ता नहीं देते और जाम की स्थिति वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे ही शारदा विश्वविद्यालय के आगे, शारदा अस्पताल के आगे लोगों को अपनी लेन फॉलो करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता अगर आप नहीं देंगे, एम्बुलेंस कहीं से कभी भी आ सकती है तो दिक्कतें परेशानियां मरीज को ज्यादा होती है ना। तो सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम यानी कि गुलाबी गुलाबी सर्द हवाएं सुबह और शाम को महसूस होती हैं और उसके बाद सुबह को नींद आ रही होती है। स्कूल जाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, बस ये सुनने का मन करता है कि कल 2 अक्टूबर छुट्टी है और कल 2 अक्टूबर और उसके बाद जाहिर सी बात है कि फिर सैटरडे और उसके बाद फिर संडे। तो इस तरीके से छुट्टियों का फिर से पैकेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बस अपना ख्याल रखिए, मौसम का मजा लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो उसका फर्क आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग। तेरा बस मुझे जीने ना दे, आस्था गिल की आवाज, इसमें हमें बड़ी आस्था है।

0: मत छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मैं ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, किसी का आभार व्यक्त करिए, किसी को थैंक यू बोलिए, और कुल मिलाकर जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वर्तमान समय में सच बात तो यह कि डेंगू, डेंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो उसका फर्क आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आता है, और जब सेहत पर फर्क पड़ेगा तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो रुपया है वो धीरे धीरे खर्च होगा आपकी तबीयत को तंदुरुस्त बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी आप कह पाएंगे कि जान है तो जहान है। चलिए, जान है तो जहान है, निश्चित तौर पर कहते हैं बड़े बुजुर्ग की हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके अंदर शरीर में वो

रुपए इसकी कीमत हो गई। और त्योहारों के सीजन में मतलब हम तो ढीले हो जाएंगे। नहीं नहीं, जेब जेब जेब, हाँ वही वही कवि का कहने का मतलब ये, मतलब कैसे कटेगी, कटेगी नहीं, इसको बोलते हैं कटरा जुनू है, आगे बढ़ने का जुनून है। और मुझे लगता है कि हमें जो वक्त गुजर रहा है उसके साथ चलने की जरूरत है। बस आप मेहनत करते जाइए, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जुनू है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरोशा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।
2: अक्सर लाइनें हमने सुनी हैं कि जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। सच बात तो यह है, और मुझे लगता है कि आप और हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, विश्वास करिएगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी वो ईश्वर की कृपा से, खुदा की मेहरबानी से टल ही जाएगी। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। ये बात मैं दरअसल क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक वजह है, और वजह यह कि अफगानिस्तान का मैं जिक्र करना चाहूंगा, सुबह के वाकये का, उस वक्त का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भूकंप आया और थैंक गॉड कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उसकी जो तीव्रता थी वो थी 5.3 रिएक्टर पैमाने पर इसको नापा गया। तो इस तरीके से हमेशा जो हिंदू कुश जो क्षेत्र है वो भूकंप का सेंटर पॉइंट रहता है, और इसकी जो गहराई थी, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया था। देखो बेटा, एक भूकंप वो आया, सच बात तो है कि जानमाल का नुकसान क्या होता है, नुकसान नहीं हुआ, आगे बोलूं? हाँ बोलो। अब जो नुकसान हुआ है, ये हमारी जेब पे जो क्या बोलते
3: हैं, नहीं नहीं, जेब ढीली हो रही है क्योंकि त्योहारों का मौसम है। सुनने में आ रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो कमर्शियल, उस पर रेट बढ़े हैं, और इसके बाद जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी यथास्थिति, यानी कि कोई रुपया नहीं बढ़ा है, और एसी टीवी फ्रिज, इस पर रुपया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं कि हमारे यहाँ युद्ध थोड़ी हो रहा है, उसका वैश्विक कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो जिस तरीके से पूरे विश्व में हालात हैं, और उस वजह से 8% तक बढ़ोतरी एसी टीवी फ्रिज पर देखने को मिलेगी। हवाई सफर भी थोड़ा महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, और EKYC घरेलू सिलेंडर के लिए आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए, वरना दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। ATM के निकासी के बारे में जानेंगे, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, डॉन को एनीवे एटीट्यूड, ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। पहली नजर में फ्रॉम द मूवी रेस 2008 की फिल्म, आए हाय,
2: अजी पहली नजर में नहीं, दूसरी तीसरी नजर में, मतलब हमें तो नेचर से प्यार होता रहता है, प्यार करते रहे।
3: गुड मॉर्निंग, मैं हूं अगर आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

प्यार एक ऐसा जरिया जिसकी वजह से बिगड़ी गलना शलना बनी जाती है बादशाह। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ। खवाचीनो हजरात, ये क्या था, तुमने थोड़े उर्दू के अल्फाज लिए तो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा बोल दूं। आई लव उर्दू। चलिए ठीक है, उर्दू इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हम सबको अपनी अपनी भाषाएं पसंद हैं। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि हमारे आसपास और क्या खास निकल कर आ रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। 1 अक्टूबर आज है और कल है 2 अक्टूबर। जाहिर सी बात है कि कल है अवकाश और महात्मा गांधी जी की कल जयंती है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। कहने का आशय है कि उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन आप बड़े इंसान बनेंगे। शाबाश, देखा जो तुम ना कह सके वो मैंने कह दिया। तो मैं कहां था? नहीं, तुम यही थे और मैं भी यही था। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि एक तारीख से हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है 62 रुपये लगभग, और एक्यूरेट अगर मैं बताऊं तो 62 रुपये, यानी कि 62.5 रुपये बढ़े। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है उस पर 8% तक की बढ़ोतरी की जा रही है। और हवाई सफर यानी कि ATF घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन ATF की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 13.5% का तगड़ा इजाफा किया जा रहा है, और जिसका फर्क आने वाले समय में देखने को मिलेगा। EKYC आप अपडेट करा लें वरना दिक्कतें परेशानी आपके सामने हो सकती हैं, और ये सब्सिडी का जो लाभ रुक सकता है अगर आपने अपडेट नहीं कराया। ATM से रिलेटेड अपडेट ये सामने आ रही है, SBI ने अपने सैलरी पैकेज जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेन देन की जो मासिक सीमा थी वो 10 से घटाकर 5 कर दी गई है, और अगर आपने ज्यादा निकाला तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, ये खबर फैला दो, अगर आपने ज्यादा निकाला तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। एल्टीट्यूड ऑलियो सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, लव यू ट्रैक। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी बुरे हो जो आवाज में चलाएगा। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ऑली सुरु शारदा 90.8 FM। हो सकता है कि कहीं आप ट्रैफिक में फंसे हो, लेकिन थोड़ा धीरे से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अननेसेसरी ओवरटेक ना करें और सामने वाले को रास्ता जरूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

ब्यूटीफुल ट्रैक ए हरिहरन, अलका याग्निक, ए आर रहमान। जब टीम इस तरीके से काम करती है तो रिजल्ट ऐसे ही आता है। फ्रॉम द मूवी गुरु ए हैरत आशिकी। नुक्ता भी बराबर लगा हुआ है ना। सच बात तो ये कि इश्क नहीं, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। अपने आप से प्यार करिए, देश से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, अपने काम से प्यार करिए। निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके फेवर में आएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन कभी प्रेशर में मत आएगा। प्रेशर में जब आप आते हैं तो निश्चित तौर पर हमने अक्सर देखा है कि काम बिगड़ जाते हैं। थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो निश्चित तौर पर गिल की तरह आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की। कल जो मैच खेला गया भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 406 रन का लक्ष्य। निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि वेस्ट इंडीज पुरानी जो टीम पहले हुआ करती थी वो लौटती नजर आ रही है, और जब लौटती नजर आ रही है तो ऐसे मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे और ऐसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 406 रन का जो लक्ष्य हमने पीछा किया और शुभमन गिल ने 400 रन देखकर थोड़ी सी डर घबराहट हुई, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की ताजी बादशाहों रिजल्ट हमारे सामने है। रोहित शर्मा ने 35वां ओडीआई शतक उन्होंने भी अपना लगाया, और गिल साहब का जो डबल सेंचुरी हुई है, आए हाय हाय हाय, छा गए बादशाहों, वो तो देखते ही बनता है ना। तो कुल मिलाकर बस कोशिश करते जाइए। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। गिल साहब ने 223 रन 133 बॉलों में बनाए, और ये जो कल का दिन था, यूं समझ लीजिए कल का दिन इन्हीं के नाम रहा, और आने वाले समय तक इनके इस रिकॉर्ड को याद किया जाएगा। तो इस बात के लिए पूरी टीम को लकलक बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए, रिजल्ट आपके सामने आएंगे ही जरूर। वक्त इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11, फिर हो गया आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव मैं रहता हूं आपके साथ। टिल देन बाबा, टेक केयर, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 सालों में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चे का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: भाभी जी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि दूध ही काफी है। असल में सही तरीका क्या है आपके अनुसार?
1: हाँ, ये आपका जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार बोलते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: कहने का मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, दूध के साथ साथ खाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए दूध ही काफी नहीं। अब उसे अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरीके का खाना खिलाया जाए, खाने में विविधता रखी जाए जिससे बच्चे का विकास तेजी से हो।
0: अच्छा, तो भाभी बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के विकास के लिए बहुत सारे तत्व जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के भोजन में प्रोटीन होना बेहद जरूरी है। इसके लिए दालें और अनाज सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि मसूर, अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दाल। ये बच्चे को ताकत देंगे और उसका शरीर स्वस्थ बनाएंगे। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ भी बहुत अहमियत रखते हैं। इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब हम सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती हैं। ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचाते हैं और शरीर के विकास में मदद करते हैं। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बेहद जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद अच्छे होते हैं।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या कुछ और खास बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग तो ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितना खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
1: बेहद अहम प्रश्न आपने मेरे से किया और मैं अपने श्रोताओं को सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये जानकारी बेहद जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना है। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जरा इस बात को विस्तार से समझाइए।
1: देखिए शशि जी, बिल्कुल मैं इस बात को विस्तार से ही समझाऊंगी, क्योंकि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधा कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए, कोई बड़ी कटोरी नहीं, बल्कि 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो तब उसका खाना और भी बढ़ा देना चाहिए। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार खाना देना चाहिए, साथ ही 1-2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बार बार खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
1: हाँ, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। जब बच्चे के शरीर का विकास तेजी से करना है तो बच्चे के भोजन की मात्रा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बच्चे का शरीर और दिमाग इस समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत और उज्जवल बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखता हूँ कि कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती है या मोबाइल पर बात करने लगती है, कुछ तो उसके खेलते समय मुंह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
1: तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। माँ को बहुत ध्यान से अपने बच्चे को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि भोजन का उसके शरीर से गहरा संबंध है। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माया जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है तो कभी कभी गले में भी अटक सकता है, कभी खाना गिरा सकता है, ऐसे में लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है।
0: ये बात बिल्कुल सही कही है आपने टीकन भाभी। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
1: हाँ, ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चे को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी और चम्मच में ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा भी धीरे धीरे खाना खाने की आदत सीख लेता है।
0: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है। चॉकलेट, चिप्स, जूस, बिस्किट, ये सब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसी चीजों से भर गई तो असली पोषक खाना तो वो खा ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चे को इनसे दूर रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चों के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ, क्यों जरूरी नहीं होता, बेहद जरूरी होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जैसे बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ के दूध को देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं, उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का ही काम है?
1: नहीं, बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का काम नहीं, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। ऐसे में अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पलता है।
0: भाभी जी, आपने पिता की जिम्मेदारी की बात की है, तो पिता की जो जिम्मेदारियाँ हैं आखिर वो क्या क्या होती हैं?
1: देखिए, माँ किसी भी बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला होती है, लेकिन अगर हम पिता की बात करें तो पिता की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना, देखभाल करना, उसे सहयोग करना भी बेहद जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लें तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व शामिल हों, जैसे पीली दालें, गहरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और दादी की क्या क्या भूमिका हो सकती है?
1: हाँ देखो, दादी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। दादी को चाहिए कि वे माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करें। घर के छोटे छोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर दे तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है, उसे दुला सकती है, ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
0: भाभी आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात तो कर ली, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत महत्वपूर्ण होता है ना?
1: बिल्कुल होता है। दादा का रोल बहुत महत्वपूर्ण और बच्चे के लिए अहम होता है। वे अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बात करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और खुशी का एहसास कराता है। दादाजी घर के माहौल को सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादाजी उन्हें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पे टीकों को लगवाना, डॉक्टर की बात मानना जैसी बातों को बार बार याद दिलाते हैं।
0: तो श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए, तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताजा आहार देना शुरू कर दें। ये क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताजा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पीसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सब को मसल कर दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बच्चे के लिए हाइजीन बेहद जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाए, खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, शौच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोएं। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें, इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक से बन जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माता पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग करें, तभी बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ भी कई गुना होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

बच्चे। स्वस्थ बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। उन्हें स्वस्थ बनाता है पोषण। पोषण उम्र के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। ऐसे ही बढ़ता रहे हर बच्चा, और इसके लिए जरूरी है सही समय पर सही आहार, जिससे मजबूत बने बच्चे का आधार। जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए केवल माँ का दूध ही उसका पोषण है। इसमें वो सब होता है जो बच्चे के सही पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन 6 माह का होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर में पका ताजा खाना देने की जरूरत होती है। हम घर में जो खाते हैं, जो हमारे आसपास उगता है, मिलता है, उसी से तैयार भोजन बच्चे को देना है। घर में बने खाने में बस थोड़ा सा बदलाव करके उसे बच्चे के लिए अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है और अब तक केवल माँ का दूध पीता रहा था, इसलिए अभी उसे ऐसा खाना देना जरूरी है जिसे वो आसानी से निगल सके। यानी हमें बच्चे को मुलायम, नरम, अच्छे से मसल कर खाना खिलाना होगा। जैसे हलवा, सूजी या आटे का, मसली खिचड़ी, मसली खीर, मसला केला या उबला आलू, दाल, चावल, दाल में मसली रोटी और सब्जी। बच्चे के खाने में थोड़ा सा तेल या घी अवश्य मिलाएं, जिससे भोजन की पौष्टिकता बढ़ेगी। आयोडीन की कमी दूर करने के लिए खाने में केवल आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। साफ पीने का पानी दें। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, इसलिए बच्चे के भोजन में गाढ़ेपन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा हो कि चम्मच तिरछा करने पर धीरे धीरे टपके। याद रखें, भोजन इतना पतला ना हो कि तुरंत ही बह जाए। बच्चे को 3 से 4 कटोरी खाना पूरे दिन में कम से कम 4-5 बार दें, और आहार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, और साथ ही माँ का दूध पिलाना जारी रखें।

ध्यान रखें, बच्चे को भोजन के बाद माँ अपना दूध पिलाए। यदि पहले पिला देगी तो शिशु का पेट माँ के दूध से ही भर जाएगा और वो खाना नहीं खा पाएगा। दाल और चावल की जो खिचड़ी आप खाते हैं, उसमें थोड़ी सी हरी पत्तेदार सब्जी डालकर बनाएं। उसे थोड़ा सा घी या तेल डालकर बच्चे को खिलाएं। इससे खिचड़ी में विटामिन ए बढ़ेगा, जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ज्यादा आयरन मिलेगा, जिससे खून बनेगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे बच्चा तंदुरुस्त होगा। खिचड़ी को दही के साथ देने पर प्रोटीन और कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, जो बच्चे की हड्डियों को मजबूती देगा। ऐसे ही दाल दलिया बनाते समय कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी और तेल या घी मिलाकर देने पर पौष्टिकता बढ़ जाएगी। ज्वार, बाजरा या गेहूं का आटा, चना दाल और तिल मिलाकर पौष्टिक पंजीरी बना सकते हैं। सभी वस्तुओं को अलग अलग भूने, ठंडा होने पर पीस लें। खिलाने के लिए 100 ग्राम दूध में मिलाएं। इसमें गुड़ मिलाकर लपसी की तरह खिलाने से शरीर के लिए जरूरी ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी तथा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम मिलेगा। बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोएं। बर्तन धोकर ही खाने के उपयोग में लें। खाना ढक कर रखें। पानी डंडी वाले बर्तन से ही लें।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
3: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
2: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
3: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
2: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
4: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
5: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
4: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
6: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आपको समसामयिक जानकारी मिलती रहे और सरकार की जो योजना है आपके लिए, हमारे ग्रामीण बहन भाइयों के लिए, उनका वो लाभ उठा पाए। और लाभ तभी मिलेगा जब आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि VVG रामजी ग्रामीण मिशन की। ये केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो मुख्य रूप से मनरेगा का आधुनिक और उन्नत रूप है। किसान मित्रों, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी भुगतान और स्थायी आजीविका प्रदान करना भी इसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश के सभी गांव गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VVG रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में अब एक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन थी। VVG रामजी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी। ये गरीबों, खेतीहार, मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांव के विकास को मजबूती मिलेगी। किसान मित्रों, पहले आपको कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर VVG रामजी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुआई और कटाई के समय, पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस योजना में यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार तय की गई दरों और शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता के परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तो मुआवजे के तहत उसे विलंबित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही VVG रामजी मिशन की। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल

चंद भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे किसान बहन भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो वो ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो हम बात खेती में तकनीक की कर रहे हैं, तो आजकल एक तकनीक का इस्तेमाल भी हमारे किसान बहन भाई खूब कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस खेती कर रहे हैं, जो एक ऐसी तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों के मौसम में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक से खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है और ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे किसानों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के माध्यम से खेती करके नुकसान से बच सकते हैं और खेती से फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

किसान मित्रों, अभी आप रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे रविंद्र खालोर और किस्सा था द्रौपदी चीर हरण का। किसान मित्रों, आप सभी चाहते हैं कि आपके खेत से अच्छा फसल उत्पादन हो, लेकिन उसके लिए खेत की मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी आवश्यक है। अब उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए तो मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो अंदाजे से तो हमारे किसान भाई कभी कोई खाद लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, जरूरत है वो भी लगा रहे हैं। लेकिन मिट्टी में सही मात्रा में खाद पहुंचे, सही पोषक तत्व पहुंचे और वो भी निश्चित मात्रा में, तो इसका पता तो लगेगा मिट्टी की जांच कराने के बाद। तो इसके लिए आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अपने खेत से अच्छा और बेहतर उत्पादन मिल सके। और

सुनील चौहान द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं उरन विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

प्रेमी सजनों बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जब की जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेहरबानों आज सत्यवान डोरी और कुल्हाड़े की लाला से खुशामद करता है। लाला जी हम पर बुरा वक्त है और हमें डोरी और कुल्हाड़ा गुजर वसर के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों कहने लगा कि चाहे मेरे ये फटे पुराने कपड़े आप गिरमी धर लो, लेकिन मुझे ऐसी मुसीबत में डोरी और कुल्हाड़ा दे करके सहारा दे दो। दोस्तों डोरी और कुल्हाड़ा सत्यवान को मिल गए और सत्यवान लकड़ी काटना शुरू कर देता है बियाबान जंगल में और अपने माँ बाप की खातर उन लकड़ियों को बेचकर दो रोटी का सहारा देता है। मेहरबानों उधर मगध देश के अंदर राजा अश्वपति की इकलौती सुता सावित्री शादी के योग हो जाती है और दोस्तों चिंता हो गई अश्वपति को। नाई ब्राह्मण जगह जगह घूमे लेकिन जोड़ी का वर नहीं मिल पाया और दोस्तों बाद में अश्वपति किस तरह से कहने लगे बेटी सावित्री।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नहीं कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रंजना, ओ रंजना।
3: जी जी जी, आ गई मैं, आ गई। ये लीजिए पानी। आज आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है,
3: मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
2: रुको, इसकी जरूरत नहीं है, ये लो।
3: ये क्या है?
2: तुम्हारा इनाम।
3: मेरा इनाम? क्या क्या है इसमें?
2: देखो तो सही, कैसा लगा इनाम, पसंद नहीं आया क्या?
3: अभी अभी ये क्या है? ये तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या है ये?
2: दिख नहीं रहा अंधी, डिवोर्स पेपर्स हैं।
3: आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना अभी? प्लीज बोलिए ना, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप ऐसा मत करिए।
2: ये तलाक के पेपर्स हैं।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज मजाक मत करिए,
2: निकल यहाँ से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, अभी नहीं।
2: निकल जाए यहाँ से, ये पेपर उठाओ, निकल यहाँ से, निकल।
3: नहीं अभी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हुआ क्या है पर मुझे ये तो बताओ पहले, अभी समझो ना मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा मत करो अभी। मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी, कैसे कहाँ रहूँगी, प्लीज अभी मेरे बारे में सोचो, मत करो ना प्लीज, ऐसा मत करो।
2: तुम जैसी बांझ औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से।
3: नहीं अभी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो अभी, प्लीज ऐसा मत करो।

0: थैंक यू सो मच ऑफिस से घर छोड़ने के लिए, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे, सच में।
1: अरे नहीं, थैंक यू सो मच तुमने मुझे अलाउ किया बल्कि अपने आप को यहाँ तक छोड़ने के लिए।
0: ओके बाय।
1: ओके बाय बाय, टेक केयर। रुको रंजना, रंजना, अरे रुको रंजना, रुको रंजना, कुछ बात करनी थी तुमसे। रंजना वैसे तो मुझे लंबी बात करने की आदत नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं, बस रंजना विल यू मैरी मी।
0: आशीष तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम जानते हो ना मैं शादी नहीं कर सकती। अगर हमने शादी कर ली तो हम फैमिली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत आए।
1: देखो रंजना, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हाँ या ना में जवाब दो प्लीज रंजना, प्लीज।
0: ऑफ कोर्स यस आशीष, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें मना कर भी नहीं पाऊंगी।

0: अरे रंजना, तुम ठीक हो? क्या हुआ, इतनी थकी थकी लग रही हो?
1: कुछ नहीं, सब ठीक है।
0: अरे कुछ नहीं कैसे नहीं, तुम्हें देख के ही पता लग रहा है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम देखो इतना लड़खड़ाती हुई चल रही हो। अरे पहले बैठो तो सही, बैठो यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है?
1: पता नहीं, बस एक हफ्ते से कुछ थकान सी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ मैं। चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ कमजोरी सी भी लग रही है। शायद गर्मी का महीना है ना, इसलिए हो रहा होगा।
0: अरे एक हफ्ता हो गया और तुमने मुझे एक हफ्ते से बताया भी नहीं। रंजना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पागल हो। चलो डॉक्टर के पास, तुम पागल हो, जल्दी चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ।
1: डॉक्टर के पास? नहीं नहीं आशीष, डॉक्टर के पास क्यों जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास।
1: नहीं आशीष, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी थोड़ी सी दवाई खाऊंगी और फिर ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि चलो डॉक्टर के पास। अरे जल्दी चलो, जल्दी उठो, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। रंजना रंजना, अरे रंजू।
1: अरे आ गए तुम?
0: हाँ रंजू आ गया, ये लो पकड़ो।
1: आशीष ये क्या है आशीष?
0: तुम खुद ही खोल कर देख लो ना।
1: ये तो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है।
0: हाँ रंजना हाँ।
1: यानी कि आशीष मैं माँ बनने वाली हूँ?
0: हाँ रंजना बिल्कुल, तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो।
1: पर ये कैसे हो सकता है? नहीं ये रिपोर्ट गलत है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं तो बांझ हूँ।
0: रंजना पुरानी बातें रिपीट मत करो बस।
1: लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गलत है, मैंने पिछले 3 सालों से कभी कंसीव किया ही नहीं, अब कैसे?
0: रंजना तुम कभी भी बांझ नहीं थी, ऐसे कमजोर लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं, तुम कभी भी बांझ नहीं थी।
1: लेकिन?
0: अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो होना था वो हो गया, अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या फिर बेटी?
1: बेटा। और तुम्हें?
0: बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।

अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय, मैं हूं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पून, महामारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महामारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महामारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महामारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महामारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महामारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं उषा और आप आज एक मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि भालू फुटबॉल कैसे खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकते? जैसे आप गेंद को किक मारते हैं, पैर से उछालते हैं, ऐसे ही भालू ने भी अपने पैर से बॉल जैसी चीज को उछाल दिया। तो आप ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि भालू ने सचमुच में फुटबॉल खेली या किसी को फुटबॉल की तरह देखा और एक किक लगाई, यानी कि पैर से उछाल दिया। तो आज हम इस कहानी में यही जानेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। तो हम आज एक कहानी सुनते हैं, भालू ने खेली फुटबॉल।
2: सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई,
3: फुटबॉल,
2: सोचा
3: चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए।
2: आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था।
4: और
2: एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था।
3: किस आफत में फंसा।
2: बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा।
5: डाल तोड़ दी पेड़ की,
4: लाओ हर जाना।
5: शेर के बच्चे ने कहा,
6: जरा ठीक तो हो लूं।
7: माली ने कहा,
4: ठीक है मैं अभी आता हूँ।
7: माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा,
6: जान बची तो लाखों पाए।
1: सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंधी धुंध थी, अपना हाथ भी खुद को दिखाई न देता था, ऐसा कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसे भी तो ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से वो गुड़मुड़ गुड़मुड़ होकर सो गया, जैसे आप सारे बच्चे सर्दियों में कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो रजाई में गड़मड़ गड़मड़ होकर सो जाते हैं। ऐसे ही शेर का एक छोटा सा बच्चा गोल मिटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पता है फिर क्या हुआ? इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे, तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आप देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया, किसे? शेर के बच्चे को। और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब सोचो क्या हुआ होगा, सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा, और ये भी सोचो कि भालू का क्या हुआ होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को यूं उछलने में मजा आ रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर यही बार बार होने लगा। यानी कि शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मजा आ रहा था और भालू साहब जो थे वे बार बार शेर के बच्चे को उछाल रहे थे। न जाने कितनी बार उछाला, शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा, 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई

और गायब हो गया। अब सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा। भालू ने तो शेर के बच्चे को उछाला और उसकी तरफ सरपट दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, ला हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है तो मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। जानते हैं 9-2-11 होने का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक, यानी कि शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ दौड़ लिया, वह भी भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो कैसी लगी आपको कहानी? भालू ने फुटबॉल खेली या कुछ और खेला? ये फुटबॉल नहीं थी, ये तो था शेर का बच्चा। कोहरे की वजह से भालू दादा को ये पता ही नहीं चला कि जिसे वे फुटबॉल समझ रहे हैं, दरअसल वो शेर का बच्चा है जो ठंड की वजह से गोल मटोल होकर सिकुड़ कर सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था। तो अब कहानी में सबसे जो मजेदार बात हुई वो क्या थी? ये मजेदार बात मेरे लिए अलग हो सकती है, यही मजेदार बात रोहन के लिए अलग हो सकती है, रिद्धिमा के लिए अलग हो सकती है, झुमकी के लिए अलग हो सकती है और अमित के लिए अलग हो सकती है। यानी इस कहानी में हर बच्चे को कहानी के अलग अलग हिस्से बेहद पसंद आएंगे। तो आप अपना हिस्सा तय कीजिए कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा, और यही बात अपने दोस्तों से कहिए, अपने घर के सदस्यों से कहिए और उन्हें बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। तो मैंने जब ये कहानी सुनाई तो कहानी सुनाते सुनाते दरअसल मुझे कहानी का वह हिस्सा सबसे अच्छा लगा जब भालू ने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और वे वहां से रफू चक्कर हो गए। भालू ने तो ये भी नहीं सोचा, शेर का बच्चा बेचारा जब जमीन पे गिरेगा धड़ाम से तो उसे कितनी चोट आई होगी। लेकिन भालू को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने शेर के बच्चे को उछाला और अपने घर की तरफ भाग गए। लेकिन पता है झुमकी को क्या पसंद आया? झुमकी ने बताया, उसे इस कहानी का वह हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और खूब गुस्सा किया और कहा कि मेरे पेड़ की डाल तुमने तोड़ दी, लाओ हर्जाना। अब सोचिए, भला एक शेर का बच्चा माली को क्या देगा हर्जाने में? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ना तो पैसे हैं, ना उसके पास कोई सामान है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो भला शेर का बच्चा माली को हर्जाने में क्या देगा? तो झुमकी को यही बात तो पसंद आई कि माली दादा ने क्या सोचकर शेर से कहा कि लाओ मेरा हर्जाना, तो इससे अच्छा वो शेर से कुछ और मांग लेते। लेकिन उन्होंने तो शेर के बच्चे से हर्जाना मांगा। और तो और, रोहन को कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया? तो रोहन को कौन सा पसंद आया हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें शेर का बच्चा वहां से 9-2-11 हो गया। अब तो कोई भी बच्चा ये जान लेता है कि जब माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो जाहिर से बात थी कि कोई भी वहां रुकेगा नहीं। माली के पलटते ही शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ को पलट लेगा। देखिए, तो रोहन को कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन रिद्धिमा को कहानी का शुरू का हिस्सा बहुत पसंद आया। कौन सा हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें कोहरा ही कोहरा था, जिसमें ठंड थी और सब लोग सिकुड़ मुकुड़ कर सो रहे थे, जाग रहे थे, घूम रहे थे, और उसके बीच में भालू सैर को निकल आया था। भालू ने तो ये सोचा था कि चलो सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, मैं कुछ सैर कराऊं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इतना कोहरा होगा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा। और ये जो पूरी कहानी में घटा है ना, ये सिर्फ कोहरे की वजह से घटा है। तो कोहरे की वजह से भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया और जोर से उसे पैर से उछाल दिया। अब सोचिए, अगर कहानी में कोहरा नहीं होता
तो क्या होता? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है, अगर कहानी में कोहरा नहीं होता तो भालू साहब शेर के बच्चे को फुटबॉल नहीं समझते, शेर का बच्चा अपने आप को उछालने के लिए नहीं कहता, भालू साहब बारहवीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर की तरफ नहीं भागते, शेर का बच्चा डाल नहीं पकड़ता तो डाल टूटती नहीं, और डाल टूटती नहीं तो फिर माली जो है वो शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होता। तो कहानी में दरअसल ये सब जो कुछ घटा है, कहानी में जो कुछ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से हुआ है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे मालूम है कि आप ये कहानी अब अपने दोस्तों को सुनाएंगे, घर में अपने बुजुर्गों को सुनाएंगे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नानी बुआ, ताऊ मौसी, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे मालूम है आप ये कहानी उन्हें जरूर सुनाएंगे, और उतने ही मजे लेकर ये कहानी सुनाएंगे जैसे मजे से आपने कहानी सुनी है। तो जब आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे तो कुछ सवाल भी पूछ लीजिएगा। क्या हो सकता है, क्या पूछेंगे आप उनसे? यही कि आखिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? आपको पता है, मुझे मालूम है कि बच्चों को तो कहानी अच्छे से याद है, उन्हें कहानी समझ में आ गई है, तो आप बताएंगे कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? सीधा सा जवाब है, क्योंकि भालू ने उसे उछाला और फिर वे अपने घर की तरफ भाग लिया। तो इसका मतलब ये है कि शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागता हुआ देख लिया था। अगर ये न देखा होता तो क्या होता? तो भर यही होता कि वह डाल नहीं पकड़ता और भालू के हाथ में आ जाता, और फिर भालू से बोलता कि अब मुझे एक बार और उछाल दो। तो शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागते हुए देख लिया था, इसलिए उसे लगा कि अगर मैंने पेड़ की डाल नहीं पकड़ी तो मैं ऊपर से नीचे टपक टपक जाऊंगा, तो इसलिए शेर के बच्चे ने डाल को पकड़ लिया। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ कि शेर का बच्चा दहाड़ा क्यों? सोचो, समझ में आया? अच्छा, आप सोचोगे कि कौन सी बार दहाड़ा, भी हमारी कहानी में तो बच्चा एक ही बार दहाड़ा था, तो शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? इसलिए क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया था। अब जिसको भी पैर से उछाला जाएगा उसे दर्द तो होगा ना। अगर मान लीजिए कि हमें ही कोई पैर से धकिया दे, हमें ही कोई पैर से उछाल दे, या पैर लग जाए जोर से, तकलीफ होती है ना, तो ठीक वही तकलीफ भालू के बच्चे को भी हुई, इसलिए वह जोर से दहाड़ा। अब सोचिए, शेर का बच्चा हमारे सामने है, शेर को तो हमने देखा ही है, शेर का बच्चा उससे 19-20 तो होगा नहीं, तो उम्र में कम होगा, साइज में कम होगा या आकार में कम होगा, लेकिन है तो शेर का बच्चा, फुंकार तो होगा और उसके दहाड़ने से हमें डर भी लग जाएगा। तो सोचिए कि जब शेर का बच्चा दहाड़ा होगा तो उसकी कितनी जोर से आवाज आई होगी पूरे जंगल में। तो उसकी दहाड़ को सुनकर भालू तो घबरा गया था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, और भरी ठंड में उसके माथे से पसीना बह रहा था। तो भालू साहब किस बात पे पछताए होंगे? इसी बात पर कि मैं तो सुबह सैर करने आया था, लेकिन इतना कोहरा कैसे हो गया? अगर ये कोहरा नहीं होता तो वे शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर नहीं उछालते। अच्छा सोचिए बच्चों, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? तो बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी, पहले आप ये बताइए कि ये आफत क्या है। तो आफत में आप लोगों की जान आफत में आ गई है, आफत का मतलब है मुसीबत। तो भालू ने ये क्यों कहा, ओह मैं किस मुसीबत में आ फंसा? बहुत सीधी सी बात है, उसे ये लगा कि शेर का बच्चा तो बार बार उछालने के लिए कह रहा है, और मैं इसको कितनी बार उछालूं, उछालते उछालते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। तो बस इसी उछालने को सोचकर भालू ने कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। अब बच्चों आप उस घटना के बारे में सोचिए जब आप किसी मुसीबत में फंसे हों और आपने उस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता अपनाया होगा। सब बच्चों के पास कोई ना कोई अनुभव तो जरूर होगा,
कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर घटी होगी जब आपको लगा होगा और जब आपने भी भालू की तरह कहा होगा, ओह किस आफत में आ फंसा। अमित ने अपना एक किस्सा सुनाया। तो पता है अमित ने क्या बताया? अमित ने कहा कि एक दिन की बात थी, मैं अपने घर से स्कूल जा रहा था। मेरे बस्ते में कॉपी किताबें कम, कंकड़ पत्थर ढक्कन मोर के पंख और न जाने दुनिया जहां की चीजें उसके बस्ते में थी। अब वह बस्ता लेकर उसको हिलाता हुआ गुनगुनाता हुआ स्कूल की तरफ पहुंचा और वह गुनगुनाने में गाने में इतने मस्त हो गए थे अमित साहब कि स्कूल का टाइम उन्हें पता नहीं चला और वे स्कूल लेट पहुंचे। और जब स्कूल के गेट पर पहुंचे तो मालूम है क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब खड़े थे गेट पर और उन्होंने अमित को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा। सोचिए अमित की क्या हालत हुई होगी। आप सब तो अब अमित की हालत को जान सकते हैं। अमित डर गए थे कि अब प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अमित ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि सर जी, वो ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर से स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक शेर का बच्चा मिल गया था और फिर मैं शेर के बच्चे को मैंने पास जाके देखा तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। मैंने उसकी मरहम पट्टी की, उसे उसके घर पहुंचाया और उसके बाद में आया। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या प्रिंसिपल साहब अमित साहब की इस कहानी में विश्वास करेंगे? भाई मैं तो नहीं करूंगी। झुमकी भी नहीं करेगी, रिद्धिमा भी नहीं करेगी और रोहन भी नहीं करेंगे। लेकिन अमित की इस बात पर प्रिंसिपल साहब को हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप समय का ध्यान रखिए। तो अमित को लगा जब प्रिंसिपल साहब इतने नरम पड़े हैं तो उन्होंने अमित ने भी प्रिंसिपल सर से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि सर ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से निकला था स्कूल के लिए लेकिन मेरे बस्ते में बहुत सारा सामान है। मुझे तरह तरह के सुंदर गोल मटोल, अलग अलग तरह के कंकड़ पत्थर पंख, ये सब इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तो बस मैं उन्हें इकट्ठा करता हुआ आ रहा था और मुझे आने में देर हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने अमित को अपने रूम में बुलाया और कहा, ये मेरी मेज है, अब इस मेज पर अपना बस्ता पलट दो। तो सोचिए अमित ने क्या किया होगा। अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल साहब की वे बात माने या ना माने। तो अमित ने अपना पूरा बस्ता प्रिंसिपल साहब की टेबल पर पलट दिया। प्रिंसिपल साहब हैरान थे। हे भगवान, ये तरह तरह का सामान, इसमें ढक्कन है, इसमें पंख है, पंख भी तरह तरह के, यानी कि अमित सड़क पर रास्ते में गिरे हुए पंखों को उठाकर अपने बस्ते में रख लेता था। मोर का पंख, तोते का पंख, कबूतर का पंख, चील का पंख, हर तरह के पंख उसके बस्ते में मौजूद थे। और तो और कंचे, अलग अलग रंग के कंचे, अलग अलग आकार के कंचे, तो कंचों का पूरा संसार अमित के बस्ते में था। प्रिंसिपल साहब को लगा कि अमित को अगर ये सारा सामान इकट्ठा करने का शौक है तो क्यों ना इसकी एक एग्जीबिशन लगा दी जाए। तो उन्होंने रिसेस के समय, यानी कि जब भोजन का समय होता है, उस समय उन्होंने स्कूल के आंगन में अमित के बस्ते की एक नुमाइश लगाई कि देखिए अमित के बस्ते में क्या क्या सामान है। सारे बच्चे आते, अमित के बस्ते के सामान को देखते और खिलखिलाकर हंसते और फिर अपनी क्लास में चले जाते। फिर प्रिंसिपल साहब ने घोषणा कर दी, भाई जिन जिन बच्चों को जिन जिन चीजों को इकट्ठा करने का शौक है वे सब उन सामानों को इकट्ठा कीजिए और हम अपने स्कूल में उस सामान की एक प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि बाकी बच्चे भी तो देख सके कि सामान किस किस तरह का है, पंख किस किस तरह के हैं और पंखों में क्या फर्क है, पत्थरों में क्या फर्क है, क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर बहुत चिकना होता है और क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर चिकना नहीं होता, क्यों ऐसा होता है कि किसी पत्थर का रंग गहरा काला होता है और किसी पत्थर का रंग गुलाबी सा होता है, ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई पंख हरे रंग का है और कोई पंख मटमैला है, और ये भी कैसे होता है कि किसी पंख में चांद के आकार की आकृति है, तरह तरह के रंग है और किसी पंख में इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये प्रकृति है। तो आपको भी अलग अलग सामान इकट्ठा करने का शौक जरूर होगा। अक्सर हर बच्चे को ये शौक होता है और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना
तो वो तरह तरह का सामान अपने पास एक झोले में इकट्ठा कर लेते।

0: क्योंकि हम कोहरे के बारे में तो बात कर चुके हैं। तो कोहरे के अलावा इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है कि अगर वह नहीं होता तो कहानी इस तरह से आगे नहीं बढ़ती? मुझे तो मालूम है, अब बताना किसको है? बताना तो बच्चों को है। तो फिर मोहित क्या बताएंगे? तो मोहित ने पता है क्या बताया? मोहित ने कहा, मुझे तो पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितने बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं, रेडियो के पास कान लगाए बैठे हैं, वे भी जानते होंगे कि इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है, अगर वह नहीं होता तो कहानी यूं खत्म नहीं होती। पता है अमित ने क्या बताया? अमित ने कहा, मेरे हिसाब से अगर भालू 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर नहीं भागते तो कहानी यूं समाप्त न होती। तो फिर रिद्धिमा ने अमित से पूछा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो अमित ने जवाब दिया, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि शेर के बच्चे ने जब भालू को देखा कि वो भाग रहे हैं अपने घर की तरफ, तो शेर के बच्चे ने ये समझ लिया था कि अब वे जमीन पर ही गिरेंगे, तो जमीन पर न गिरे, चोट न लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पेड़ की डाल को पकड़ लिया। लेकिन कहां बेचारी पेड़ की डाल, कहां शेर का बच्चा? वो पेड़ की डाल शेर के बच्चे का भार सहन नहीं कर सकी और पेड़ की डाल चटाक से टूट गई। अब अगर डाल टूटी हुई नहीं होती तो माली जो है वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते। अब जब वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते तो शेर को भी यूं सरपट होकर अपने घर नहीं भागना पड़ता। शायद हो सकता था कि शेर जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर कुछ देर और सो लेता। तो आपके जैसे बच्चे जब बहुत ठंड होती है तो रजाई से बाहर नहीं आते, और तो और नहाने में भी कोताही बरतते हैं कि नहीं बहुत ठंड है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जो कहते हैं पानी गीला है। अब सोचे कि पानी गीला ही तो होगा, सूखा कैसे होगा, और ठंड में पानी ठंडा होगा वो गर्म कैसे होगा? तो रिद्धिमा ने तुरंत कहा, गीजर चला लेंगे। तो मान लीजिए अगर लाइट नहीं आई तो गीजर कैसे चलेगा? तो रोहन ने कहा कि हम गैस का गीजर लगा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो पानी कैसे गर्म होगा? तो फिर अमित ने कहा कि हम सूरज की रोशनी में रख देंगे। फिर मैंने कहा कि अगर कोहरा कोहरा होगा तो सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी, वहां से कैसे गर्माहट मिलेगी? तो फिर सब बच्चे परेशान हो गए कि आप तो हर बात पर एक सवाल कह देती हैं, कहानी का सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आप सोचिए तो सही कि हम जो बात कह रहे हैं अगर वो सब चीजें न हो तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचता है? तो कहानी में ऐसी तमाम घटनाएं हैं, अगर वे नहीं होती तो कहानी का अंत यूं नहीं होता। तो ठीक है, आज हम इतनी ही बात करते हैं इस कहानी के बारे में, और अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, और बहुत जल्दी हम इस कहानी के अगले हिस्से के साथ मिलते हैं। नमस्कार
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा जो गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं सिर्फ अपने सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब यही कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, और हर रोज सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। चलिए जनाब, आज कुछ खास है। जब मैंने समुदाय का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें होंगी, हमारी बातें होंगी। शारदा विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो यहाँ पर स्टूडेंट की भी बातें होंगी। समुदाय यानी कि समुदाय जोड़ने का काम करता है। समुदाय जहाँ एक छत के नीचे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर के बीच में जब हम जाते हैं, हमारे टीचर जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमने एक नाम दिया है और जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है, राबता। राबता यानी कि एक जुड़ने का जरिया, कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए समुदाय को जोड़ने का ये सफर है। सफर है तो जाहिर सी बात है कि इस सफर में कुछ हम सफर भी होंगे। जी हाँ, कुछ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़ी ही शख्सियत, बहुत खूबसूरत शख्सियत आज हमारे बीच में है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा, उनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे बीच में है एडवाइज़र हैं आप कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, साथ ही साथ शिबानी फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, आप हैं डॉक्टर बर्नाली खरा मैम। तो मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, थैंक यू एवरीवन जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है 90.8 FM से। और मैं इस कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए मैं कुछ बात अपना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे अपने स्टूडेंट को, अपने एक और कम्युनिटी को जो जहाँ से सुन रहा है मेरी आवाज़, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचना चाहिए ये समुदाय को हमें ऊपर जाने के लिए।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात दोस्तों। ये जो सफ़र है यूं ही चलेगा, कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि इस सफ़र को हम आगे लेकर जाएंगे और हम आप ही की बातें करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो दूसरे ख़ास मेहमान हैं, आप हैं कम्युनिटी कनेक्ट हेड डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम। तो मैम आपका भी सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। शारदा रेडियो जो कि वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से आज हम बातचीत करेंगे कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में।
0: और तीसरी जो शख्सियत है उनका मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं तब बुलाऊंगा उनको जब हमारी उनसे खुद डायरेक्ट बात होगी। तो ये जो यू कहना कि पर्दे में रखा हुआ है उस खास मेहमान को आप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा तो आपके दिमाग को जोर देना ही चाहिए। चलिए आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो अभी थोड़ा वेटिंग में चल रही है। लेकिन कम्युनिटी कनेक्ट का जब हमने जिक्र किया है तो जिक्र हो रहा है एक समुदाय का, जिक्र हो रहा है आपकी बातों का, जिक्र हो रहा है UGC क्या कहती है, विश्वविद्यालय क्या कहता है, किस क्राइटेरिया के तहत हम लोग मैदान में जाते हैं, स्टूडेंट्स भी मैदान में जब जाते हैं कि तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, यही सारी बातें करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ विशेषज्ञ जुड़े हुए। तो डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में आपने क्या अब तक देखा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकें तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं।
1: मैं कम्युनिटी कनेक्ट का एडवाइज़र भी हूँ और मेरा अपना फाउंडेशन भी है, शिवानी फाउंडेशन
0: जी।
1: तो मैं वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी से मिलती हूँ जहाँ पे आपको और कुछ नज़ारा दिखेगा, वहाँ का लोगों का प्रॉब्लम, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, मुझे लगता है मेरे साथ साथ सबको वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए
0: जी।
1: और मेरा अपना एक स्कूल भी है वहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन के लिए, तो वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनको फ्री में मैं सारा एडुकेशन देती हूँ वहाँ पे। और मुझे लगता है ये बच्चों भी उस दुनिया तक पहुंचना चाहिए जहां पे ऐसे लोग रहते हैं।
0: जी, आप जो जिक्र कर रही हैं वहां ये जगह है कहां?
1: ये हमारे एरिया में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये इस और से थोड़ी सी दूरी में
0: ग्रेटर नोएडा के पास में
1: कासना एरिया है।
0: हाँ जी,
1: इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर आते हैं बाहर से, जो माइग्रेंट लेबर है ज्यादा, तो उनका एक एक घर का एक एक कहानी है।
0: नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये सक्सेस स्टोरीज हम बोलते हैं, उसको नजदीकी से जब जानेंगे समझेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। तो क्या क्या स्टोरीज वो रहती है, थोड़ा सा अगर हम संक्षेप में बताएं।
1: वो लोग ऐसे दुनिया में जीते हैं, उनके लिए खाना ही सब कुछ है, उससे आगे वो लोग सोच ही नहीं सकते जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे जो लगता है जो शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तो इसको आगे नहीं ले जा सकते। इस समुदाय को आगे जाने के लिए मुझे लगता है मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: बेशक मैम, और इसीलिए कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या आपको पात्रता लेकर आती है, विद्या आपको धन देती है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। तो हम सब यही कामना करते हैं कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो इसके बारे में मैम हम जरूर चर्चा भी करेंगे, और अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके शिबानी फाउंडेशन जरूर जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ तभी जाकर हमारा
1: है, मेरे साथ साथ इस अंधेरे में एक एक दिया कभी भी जलाएंगे सब लोग, तो और आगे बढ़ जाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: ज्योत से ज्योत जलाते चलो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जो हमारे दूसरी गेस्ट हैं, आप हैं डॉक्टर निमी अग्रवाल, जो कि हेड है कम्युनिटी कनेक्ट की। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो आप भी कुछ हमें बताएं कि जब आप मैदान में जाते हैं तो किस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, कम्युनिटी कनेक्ट का जो एक उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करती हैं।
2: बिल्कुल गगन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस या क्या बच्चे हमारे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कम्युनिटी कनेक्ट है क्या
0: जी,
2: और शारदा विश्वविद्यालय का क्या उसके तरफ रुख है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये जो एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मिशन है।
0: क्या बात,
2: एक मिशन है जो शारदा यूनिवर्सिटी अपना चलाती है कम्युनिटी कनेक्ट के नाम से, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो इसका जो बेसिक फिलॉसफी है कम्युनिटी कनेक्ट की, वो ये है कि जो हम सीखते हैं ना वो सिर्फ हमारे काम आता है, सोसाइटी के नहीं, लेकिन हम कम्युनिटी कनेक्ट के तहत बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं अबाउट द कम्युनिटी, राइट। तो सेंसिटाइज और अवेयरनेस करने से उससे उनको है ना सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, ताकि उनको सोसाइटी के जो और चैलेंजेस हैं वो भी उनको समझ में आए। तो यही सोच जो है शारदा कम्युनिटी कनेक्ट के हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो नॉलेज को एक्शन में बदल देता है, राइट। केवल वो नॉलेज हमारे अपने पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। और इसमें यूजीसी भी यही कहता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचिंग रिसर्च करते ही हैं, लेकिन व्हाट दे आर सर्विंग बैक टू द सोसाइटी, तो उसी के तहत भी ये कम्युनिटी कनेक्ट हमारा पर्पस सॉल्व करता है, उसको सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, उसके बारे में बात होती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, कम्युनिटी कनेक्ट का जो मतलब है वो ये है, यूनिवर्सिटी और समाज के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना, राइट। क्योंकि जब किताबों की लाइंस ना जिंदगी की लाइन से मिलती है ना, तभी बनता है एक असली एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी है,
0: बिल्कुल आपने
2: कि हाँ नॉलेज को ना, जो किताबों की नॉलेज है उसको हमें जिंदगी से जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तो असली एजुकेशन जो है ना वो किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें पंख देने हैं, उन्हें हमें समाज से जोड़ना है। और आजकल अगर आपको पता ही है जेन जी के हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत जरूरी है कि उन्हें हमें समुदाय से कनेक्ट करें।
0: देखिए जो आपने कहा कि जेन जी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं, एक नया वर्ड है किसी के लिए, तो थोड़ा अगर आप इसको विस्तार दे सके तो आप मुझे बताइए।
2: जेन जी मतलब बेसिकली क्या है, जो जनरेशंस हैं उनकी बॉर्न डेट और ईयर यूथ,
0: यस,
2: तो दोज हु हैव बॉर्न आफ्टर 2010 और 2014 उनको जेन जी कहा जाता है।
0: सही जवाब।
2: तो जो है उन बच्चों का सोचना और हम लोगों के सोचने में थोड़ा
0: फर्क
2: है,
0: जिसको आम भाषा में हम सुनते हैं कि एक जनरेशन गैप आ गया,
2: जनरेशन गैप
0: आपकी सोच पुरानी है, हम आज का यूथ है।
2: हाँ, हाँ,
0: तो मैम शुक्रिया आपने इस पर रोशनी डाली, क्योंकि कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न हो। लेकिन मैं एक और बात आपसे थोड़ा सा जानना समझना चाहूंगा कि जब लोगों को आप एकत्रित करते हैं, जब हम भी मैदान में जाते हैं कम्युनिटी कनेक्ट के बीच प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार की एक मीटिंग में कोई क्राउड हमारे सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं डर होता है, घबराहट होती है, उनको ये भी लगता है कि आप अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए क्या। तो नो डाउट एक फ्यूचर प्लानिंग है। अब यहाँ जो प्लानिंग को लेकर चलते हैं, नो डाउट कि शिबानी फाउंडेशन आप अपना काम कर रहे हैं, शारदा विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहा होता है, सिर्फ एक मीटिंग में वो काम मुझे लगता है सफल नहीं हो पाता होगा जो हमारा उद्देश्य रहता है। तो जो आप मैदान में उतर रहे हैं, तो ये जो चैलेंजेस की बात है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं, तो किस तरीके की क्राउड मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, क्या उनके सवाल होते हैं?
2: हाँ, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस वन वे नहीं है, टू वेज हैं। एक तो चैलेंजेस यही है हमारे सामने कि बच्चों को उस चीज को समझाना कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो परसेप्शन उनके दिमाग में, वो विजन उनके दिमाग में सेट करना। दूसरा, जहां हम कम्युनिटी में लेके जा रहे हैं उनकी वो आइस ब्रेकिंग करना कि जहां वो बोले कि हाँ ये इश्यूज हैं। जनरली जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं और जो अपने काम कर रहे होते हैं वो इतना समय देना नहीं चाहते कि जहां वो बातचीत करें और अपनी प्रॉब्लम को जाते ही एकदम से ओपन अप करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मिलना पड़ता है, एक विश्वास उनके साथ कनेक्ट बनाना पड़ता है, विश्वास डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो हमको शेयर कर सकें।
0: मेरे साथ डॉक्टर बर्नाली खरा मैम हैं दोस्तों। तो मैम मैं इस संबंध में आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूँ फाउंडेशन फिर अपना काम करता है। हाँ। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, आप एजुकेशन उनको दे रहे हैं, उनको यूँ कहें कि एक वर्कशॉप आयोजित कर दे रहे हैं, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट्स को लेकर आता है और यहाँ पर एक छोटी छोटी वर्कशॉप भी हो रही होती हैं। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैम ने अभी बातें रखी?
1: नहीं, या तो स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी कनेक्ट मुझे जो लगता है सिर्फ चैप्टर में नहीं है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस दुनिया के बाहर और लोग कैसे जीते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका हर दिन का कैसे चलता है, वहाँ रोजगार है, कैसे वो मैनेज करते हैं, आप कितना हैप्पी रहते हैं वो लोग, ये सब चीज़ उनको शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया से वो दुनिया फर्क है,
0: बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमने देखा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे होते हैं।
1: हाँ।
0: शायद अगर जब बदरा आते हैं तो वो दुआ करते हो कि ये पानी ना बरसे, अगर पानी बरस गया तो मेरी झोपड़ी का क्या होगा। तो ये बहुत चैलेंजेस है।
1: मैंने बोला पहले भी, उनके लिए बस फूड ही सब कुछ है
0: जी,
1: बस खाने पीना जीना, बस उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते ऐसे ही। और उनके पास बहुत सारे जिम्मेदारी है, बीमार, हर घर का एक एक स्टोरी होती है वहाँ पे।
0: बेशक, बेशक।
1: आप जितना दिन जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, तो एक एक स्टोरी डेली निकाल के आएगा वहाँ पे।
0: बेशक मैम।
1: तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाने।
0: मैं ये कहूँगा कि मैं खुलकर आपको एक अपनी बात रख रहा हूँ कि आप हमें निमंत्रण दें, हम आपके साथ चलना चाहेंगे।
1: जरूर, जरूर,
0: ताकि हम इस तरह की स्टोरीज को कवर कर सकें, अपने रेडियो FM पे लेकर आ सकें, जो शिबानी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप कहें तो दोस्तों हम तीसरे मेहमान को बुला लें, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर हमारी बातें खत्म हो गई तो वो नाराज भी हो सकती है और हो सकता है खफा भी हो जाए, लेकिन हम अपने मेहमान को खफा नहीं करेंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत ज्यादा है, बहुत अथाह भंडार है, खजाना ही खजाना है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं और आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, आपके साथ ग्राउंड में मैं गया हूं। तो आप हैं मेरे साथ, आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की, डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार गगन, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो रेडियो FM और हमने पहले भी कई शो करे हैं अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, और यहाँ पे हर बार आना एक नया अनुभव रहता है। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को स्नेहपूर्ण नमस्कार करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी गगन और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान करा।
0: तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं आपको बुलाता नहीं और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सवाल नहीं है आपके लिए, मेरे पास सवाल अभी बाकी है। कह सकते हैं दोस्तों कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पठन पाठन की बातें हो रही हैं, ज़िंदगी को समझने की बातें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, UGC अपना एक क्राइटेरिया बनाता है और उसके तहत जैसे कि हमने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा होता है, शारदा विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है। और यही एक वजह है कि जब स्वास्थ्य का मैम ने जिक्र किया तो शारदा अस्पताल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उस चीज को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो मकसद है इसके पीछे हमारी क्या सोच है, क्या विजन है। अभी मैम से मेरी बातें हो रही थी, चूंकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर सर हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मकसद है वो विश्वविद्यालय का क्या मकसद है, हम कहाँ तक पहुँचें, कहाँ तक जाएं, उनको आगे तक भी लेकर आएं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो उनको यहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ की हो, बात हो हेल्थ की, तो कुछ और आप हमें बताएं।
3: जहाँ आपने ये सूत्र छोड़ा है मैं वहाँ से इसको उठाती हूँ। जैसे आपने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को अगर हम लेकर चले और स्पेसिफिकली आज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो एक मकसद है और स्पेसिफिकली शारदा विश्वविद्यालय का, ना सिर्फ अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है बल्कि अच्छे नागरिक बनाना है। तो वो जो एक स्पिरिट और जो एक फीलिंग ऑफ एबल सिटीजनशिप जो हम बात करते हैं, तो ये जो मकसद है उसका जो सीट है ये उस चीज़ को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जैसे आप बात करें कि वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, UGC है और NAC है और अदर इस तरह की बॉडीज़ हैं, पर यहाँ पे दो चीज़ों का मैं आपके सामने जो है विवरण करना चाहूँगी कि दो चीज़ें जो बहुत महत्व रखती हैं आजकल के टाइम पे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का मिशन
0: जी वर्ष 2047 तक
3: जी, तो कुछ क्योंकि आप इसको एक गमले की तरह ले सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, तो उस तरह का एक ब्रांच आउट हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो मिशन है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज ना हो, जो असमानताएं हैं वो ना रहे और सबको एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रदान कर पाए, राइट। और इनका जो जेनेसिस है, क्योंकि ये तार से तार जुड़ता जाता है, वो जाता है, मैं आपको लेके जाऊंगी 2016 एक जनवरी को, जहाँ पे UN ने 17 SDGs जिसको हम बोलते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी। तो जो हमारा चाहे हम शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की स्थापना की बात करें या हमारे कम्युनिटी कनेक्ट की बात करें, तो इन सब के जो तार हैं वो जुड़ते हैं हमारे भारतीय मिशन के साथ और हमारे वैश्विक मिशन के साथ, जहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों की बातें करते हैं।
0: जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको विस्तार से हमें बताया, हमारे लिसनर्स तक बात पहुँचाई आपने, और मुझे एक नई चीज़ सीखने को समझने को मिली कि आपने जो मूल्यों की बात की, संस्कारों की बात की, वो कहीं ना कहीं आज गुम होती हुई नज़र आ रही है। और हम सबका फ़र्ज बनता है कि अगर हम एक भी विद्यार्थी को वो संस्कारों के साथ आगे लेकर जा पाएँ तो निश्चित तौर पर उसका जो योगदान होगा वो हमारे देश में होगा। डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, नैतिक शिक्षा को जब आप देखते हैं तो कहाँ आप पाते हैं कि वो नैतिक शिक्षा जिंदा है या नहीं है, क्या हम उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे लेकर जा सकते हैं? हमारे यहाँ वर्कशॉप्स भी होती हैं और जब आप ग्राउंड पर जाती हैं तो क्या आप महसूस करती हैं महिलाओं का वो दुख दर्द, क्योंकि बीइंग ए लेडी होने के नाते दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप बताएं नैतिक शिक्षा।
1: प्रधानमंत्री का जो मन की बात है
0: जी,
1: जो ये जो ब्रिज गैप क्लियर करना है, हमें गैप जो है उस सोसाइटी के साथ इस सोसाइटी की, तो मुझे लगता है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सोसाइटी के साथ वो सोसाइटी जब तक कनेक्ट नहीं होगा, SDG के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे कैसे एक एक गोल हम पूरा कर सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और
0: महिलाओं के क्या चैलेंजेस?
1: अच्छा, महिलाओं का महिला अभी तक रूरल एरिया में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोकल एरिया में मैं जब जाती हूँ उनके पास, अभी तक मैंने जो गांव विजिट किया हुआ देखा, किसी के पास अभी तक मोबाइल नहीं है।
0: जी जी,
1: ऐसे भी देखा है। मैं आगे एक स्टिचिंग सेंटर खोलना चाह रही हूँ, तो उस गांव में हमने देखा है उनके किसी के पास अभी मोबाइल नहीं है। बोला यहाँ मोबाइल महिला के लिए नहीं है।
0: कहीं ना कहीं वो
1: अभी भी अंधेरा है ही वहाँ पे।
0: यानी कि पुरुष तो आगे बढ़ना चाहता है, महिलाओं को वो मोबाइल देते हुए भी डरते हैं।
1: हाँ, नहीं अभी तक वो देखा नहीं, वो सोच बदलना पड़ेगा। कोई पर जाके मैंने देखा है उनके पास ना आधार कार्ड मतलब एडिट ना हुआ है, शादी के बाद वो पुराना ही आधार कार्ड है उनके पास। आप बेसिक चीजें सब नहीं, बाहर जाने नहीं देते हैं, अपनी बहू को बाहर जाने का भी मना है। बहुत सारे चीज मुझे
0: चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो आ ही रहे हैं।
3: जैसा मैम ने कहा उसको आगे ले जाते हुए, कई बार हमें लगता है कि जैसे आपने कहा गगन कि ये मानसिकता की बात है, राइट? तो एक ये एक मेंटल ब्लॉक भी है। दूसरा मैं कहूँगी यहाँ पे खुद औरतों को भी अपना एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है।
0: क्या बात?
3: तो हर बार हम दूसरे पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते, जैसे अगर हम महिला और पुरुष की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे जो हमारा शारदा सोशल बिजनेस सेंटर है, वो महिला कारीगरों को साथ जोड़ के उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग देता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़े, आप कस्टमर से कैसे बात करें। और ये सारी जो महिलाएँ या माइग्रेंट वुमेन है और ये क्रोशे के काम में, जो कढ़ाई होती है उसके काम में एंगेज है। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि ऐसी मेरी एक महिला कारीगर से बात हो रही थी कि आप आइए, हम शारदा में एक आपकी प्रदर्शनी लगाएंगे आपके काम की, जिससे आपके काम को एक पहचान मिलेगी। तो उनके पहले दिमाग में आया कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी, और दूसरा कि मेरे बच्चों को कौन रखेगा। तो मैंने उनसे फिर सवाल करा कि ये काम तो आप अपने पति से पूछ सकती हैं, एक दिन वो शायद घर पे रह ले। बोले मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिला श्रोताएं सुन रही हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक रखें। हम एक परसेप्शन के साथ चलते हैं कि शायद दूसरा हमारी बात समझता है और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, जहाँ की बात होती है कि हमने अपनी बात उन तक रखी नहीं है।
0: जी जी, इस बात को अगर हम यूँ समराइज करें तो ये बात निकल कर सामने आती है कि बात करेंगे तभी बात बनेगी। बड़े से बड़े मसलों का हल हो जाता है जब आप बात करते हैं, अदरवाइज आप घुट जाते हैं, आप परेशान हो जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने अपनी बात, मन की बात हमारे साथ साझा की, तो मुझे लगा कि इससे एक बात यही समझ में आई कि हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और ये

0: तो स्टूडेंट काफी इंटरेस्टेड है, मैं नहीं बोलूंगी स्टूडेंट जानना नहीं चाहते हैं, और आने के बाद भी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मैंने कोई कोई स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए देखा है जो मैम ये दुनिया तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं सोच रहा था जो मैं ही गरीब हूँ, लेकिन हमसे भी इतना गरीब लोग है, हम देख के मुझे अच्छा लगा ये सब चीजें।
1: यही हमारा मकसद है कि उस चीज को, दुख दर्द को आप जाने समझे, और बड़ी खूबसूरत लाइन है कि मेरा गम कितना कम,
0: प्यार से समझाओ तो बच्चे भी समझ जाते हैं, ऐसे नहीं है, दुनिया बदलेगा जरूर।
1: क्या बात है, दुनिया बदलेगा जरूर, हम छोटे कदमों से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल को पा ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी तरफ से छूट रही है मैम, तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलें।
2: अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, उस उपलक्ष में, क्योंकि मैं भी एज ए वॉलंटियर, जैसे मैम ने कहा, शिवानी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हम जो अपने श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं, एक तो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट जो है वो www.shivanifoundation.com है, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि हम एक, जैसे आपने कहा कि एक अकेला नहीं जो है वो काफिला बनता और लोग साथ में जुड़ते जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका सहयोग अगर किसी तरह से हमें मिल पाए, क्योंकि जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात हो रही है, या हमारे बच्चे जब कम्युनिटी में जाकर उन लोगों की दुविधा देखते हैं, तो उस तरह के काफ़ी समस्याएं हैं जो शायद रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन शायद उस तरह का जो एक पहल है वो नहीं ली गई। तो
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा। 01204060205 ये हमारा नंबर है। ठहराव के साथ मैंने इसलिए बताया, कभी कभी मैं भी श्रोता होता हूँ, तो जब रेडियो प्रेजेंटर के नंबर मैं फड़फड़ सुनता हूँ तो मेरे वो सर से ऊपर चला जाता है, यानी कि 120 40 60 205 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों के लिए खुले हुए, आप कभी भी आइए, यहाँ का आप दौरा कर सकते हैं। तो मैम आखिर में मैं डॉक्टर निमी अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमें बता रही थी कि जो एक विजन है, जो एक सोच है हमारे चांसलर सर की, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से शारदा विश्वविद्यालय को वो आगे लेकर जा रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, प्लीज।
3: जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर हैं श्री पी के गुप्ता जी, उनका विजन है, उनका इसी बात पे ज़्यादातर जोर रहता है कि यूनिवर्सिटी का असली काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि सोसाइटी के बीच जाकर उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उनका मानना है कि हर स्टूडेंट एक चेंज मेकर हो सकता है, बस उसे एक मौके की और सही दिशा की ज़रूरत है। उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जैसे मैंने बताया जेन जी, राइट, तो जेन जी के जो जो हैं, ये जनरेशन है, ये स्टूडेंट्स हैं आज, इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हाउ डू दे सर्वाइव इन सच अ मीगर सैलरी, इतना कम पैसे में वो कैसे अपनी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा हर बच्चे को इस विषय में पता हो कि सर्वाइवल कितने कम में हो सकता है।
1: क्या बात है, इस बात को अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो उस विजन को हमारे वीसी सर मिशन बनाकर, हमारी टीम मिशन बनाकर आगे, सही बात कह दी,
3: बिल्कुल सही।
1: हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, मेरे भी चेहरे पर हंसी आ गई कि आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत। लोग कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं ताना बाना बुन रहा होगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो मेरे साथ मेरे जो खास गेस्ट जुड़े रहे, मैं आप सबका बारी बारी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ी रहीं आप, जुड़ी रहीं शिवानी फाउंडेशन की फाउंडर और एडवाइजर कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई मैम।
0: थैंक यू गगन जी, थैंक यू सुनो सरदा 90.8 FM जो सुन रहा है, सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, और सब जुड़ जाइए शिवानी फाउंडेशन।

0: एंड कम्युनिटी कनेक्ट से।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। साथ ही साथ डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर निमी अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रही मैम, इशारा कर रही अगर मुझे कुछ कहना है प्लीज मैम।
2: जी, मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन सोहन लाल त्रिवेदी जी की दो लाइनें मुझे याद आ रही है
1: जी,
2: कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जिस चीज को, इस जज्बे को लेते हुए हम जीवन की कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आए उसको हम पार कर सकते हैं, और जीवन को जैसे एक अगर ने कहा, एंजॉय करिए, कीप हेल्दी एंड कीप सेफ। थैंक यू।
1: थैंक यू मैम। डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम आप भी कुछ कह दी।
3: गगन जी, द वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, और दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और जरूर दोबारा जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।
1: तक के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
1: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
0: अरे वाह। नंबर दो,
2: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
0: शाबाश। नंबर तीन,
1: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
0: बढ़िया। रोल नंबर चार,
3: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
0: अरे वाह। तुम
1: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
0: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
4: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM. Suno Shal.
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: अरे हमारे आदत में तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे
1: हैं? टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा।

0: खतरा पाती।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी गलती नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
4: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
5: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
4: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
5: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
5: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
5: नहीं चमन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
4: वाह, कचरा भी आएगा दोबारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
5: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
4: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
5: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
5: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
5: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
4: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या

0: चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Arun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो

आंख मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
0: तो अभी चलो।
2: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।